0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि संपूर्ण कलीसिया में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रेरिताई की प्रतिस्थापना हो, ताकि मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव और कलंक को अभिभूत किया जा सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह।

श्रोता और रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत परम पावन उद्धारक की ओबलेट धर्म बहनों के मिशन पर प्रकाश डाल रहे हैं। मेक्सिको सिटी मेक्सिको की राजधानी एवं पश्चिमी गोलार्ध का सबसे बड़ा और धनी आबादी वाला शहर है, जो अपने प्राचीन इतिहास, अनूठी भौगोलिक स्थिति और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। इसके बावजूद इस महानगर में कुछ नकारात्मक चीजें भी हैं, जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जैसे सड़कों पर भेदभाव, गरीबी, अलग थलग किया जाना और व्यवस्थित हिंसा, जो आबादी के एक बड़े हिस्से पर असर डालती है। जहां सड़कों पर कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो विभिन्न परिस्थितियों के कारण वेश्यावृत्ति में पड़ गई हैं। इनमें से हर एक की अपनी मुश्किल कहानियाँ हैं, जैसे हिंसा का शिकार होना, अकेले छोड़ दिया जाना, अवसर की कमी और कम उम्र में ही परिवार से अलग कर दिया जाना। इन महिलाओं की मदद करने के विचार से परम पावन उद्धारक की ओबलेट धर्म बहनें दिन और रात अपने मिशन की जोखिम उठाते हुए सड़कों पर निकलती हैं। उनका काम है साथ चलना, सुनना, साथ देना और अपनी उपस्थिति द्वारा उनकी गरिमा को वापस लाना। उनकी नजरें बीती हुई अतीत पर सवाल या न्याय नहीं करती, बल्कि इंसान और उसकी गरिमा को पहचानती हैं। वेरबुम दे मिशनरी फ्रेटर्निटी की धर्म बहन सिस्टर लुसिया हेरेरियास को इन महिलाओं के साथ ईश्वजन साझा करने में ओबलेट धर्म बहनों के साथ मिलकर काम करने का अवसर मिला। वे बतलाती हैं, जब उन्होंने मुझे परम पावन उद्धारक की ओबलेट धर्म बहनों के साथ मिलकर काम करने के लिए बुलाया, जो वेश्यावृत्ति में पड़ी महिलाओं के साथ काम करती हैं, तो मैं इस अवसर के लिए खुश हो गए, क्योंकि इसके द्वारा मुझे लाचार लोगों को ईश्वर का वचन सुनाने का अवसर मिला। सिस्टर लुसिया का साक्ष्य एक महत्वपूर्ण बात की पुष्टि करता है कि बहुत मुश्किल हालत में भी मनुष्य का दिल ईश्वर के लिए खुला हो सकता है। वे इन महिलाओं के ईश्वरचन के प्रति खुलेपन से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि जिस मुश्किल हालात में वे जी रही हैं, उनके बीच भी ईश्वर की दया और उनका सामीप्य उन्हें मिल सकता है। ओबलेट धर्म बहनें उन जगहों पर महिलाओं के करीब आती हैं जहां वे काम करती हैं और उन्हें रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, मनोवैज्ञानिक मदद और विश्वास प्रशिक्षण प्राप्त करने में मदद करती हैं। वे सभी अपने व्यक्तिगत सफर पर हैं, उनमें से कुछ प्रशिक्षण पूरी कर लेती हैं और जीने के दूसरे तरीके ढूंढ लेती हैं। कुछ लोगों के लिए यह मुश्किल होता है, लेकिन ओबलेट की धर्म बहनों में उन्हें हमेशा स्वागत और मदद की जगह मिलती है, जहां वे एक व्यक्ति के रूप में अपनी गरिमा खोज सकती हैं और अपने फैसले खुद लेती हैं। इस प्रक्रिया में ईश्वर का वचन आशा और आंतरिक स्वास्थ्य का जरिया बन जाता है। सिस्टर लुसिया कहती हैं, मैं यह देखकर प्रभावित और खुश होती हूँ कि कैसे ईश्वर अपने वचन के माध्यम से उनसे बात करते हैं और उन्हें आशा देते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि वे उनसे बहुत प्यार करते हैं। सिस्टर लुसिया एक खास अनुभव बताती हैं जो इस सफर को दिखाता है। एक बार क्रिसमस की तैयारी के लिए एक आध्यात्मिक साधना के दौरान उन्होंने धीरे धीरे एक औरत को ईश्वचन पढ़कर सुनाया जो पढ़ नहीं सकती थी। अंत में उसने उससे पूछा कि बेतलेहम की चरनी के सामने खड़े होकर आपने क्या देखा या महसूस किया, तो उसने बताया कि कुंवारी मरियम को देखा जो यीशु को अपने गोद में ली हुई थी और कह रही थी कि वे मुझसे बहुत प्यार करती हैं। यह अनुभव यीशु की उन बातों की याद दिलाती है जिसमें उन्होंने कहा था कि स्वर्ग के राज्य में वेश्याएं एवं नाकेदार पहले प्रवेश करेंगे। कई लोगों ने बचपन से ही बहुत मुश्किल जीवन जिया है। कुछ मामलों में उनके अपने ही माता पिता या दादा दादी ने उन्हें किशोरावस्था में वेश्य बनने के लिए मजबूर किया। सिस्टर लुसिया भाषा और नजर के महत्व पर बहुत ध्यान देती हैं। वे कहती हैं, मुझे लगता है कि यह बताना जरूरी है कि धर्म बहने उन्हें वेश्या या यौन कर्मी नहीं, बल्कि वेश्यावृत्ति में पड़ी औरतें कहती हैं। वे वेश्य नहीं हैं, बल्कि वे एक ऐसी परिस्थिति में पड़ गई हैं जिससे वे छोड़ नहीं सकती, भले ही रास्ता लंबा और मुश्किल हो। इस सफर में प्रार्थना करने सीखना और यह जानना कि ईश्वर अपने वचन के माध्यम से उनसे बात करते हैं, उन्हें स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ने की ताकत एवं हिम्मत देता है। ओबलेट धर्म बहनों और लुसिया हेरेरियास की मिलीजुली कोशिशें इस बात का जीता जागता सबूत है कि एक ऐसी कलीसिया होने का क्या मतलब है जो आगे बढ़ती है, एक ऐसी कलीसिया जो सुरक्षित जगहों का इंतजार नहीं करती, बल्कि इंसान के दायरे में चलने की जोखिम उठाती है।
एक ऐसी कलीसिया जो मानती है कि दया एक ठोस अनुभव है जो इशारों, शब्दों, नजरों में दिखती है, एक नजर जो परिवर्तन ला सकती है। वह भोली नहीं होती, वह असलियत की कठोरता को नहीं नकारती है या दुख को रोमांटिक नहीं बनाती। या एक ऐसी नज़र है जो दर्द को पहचानती है लेकिन उसमें फंसी नहीं रहती। यह एक ऐसी नज़र है जो उन अवसरों को देखती है जहां दूसरे सिर्फ नाकामी देखते हैं। यह यीशु की नज़र है जो सड़कों पर चलते हैं उन लोगों के माध्यम से जो उनकी तरह देखने की हिम्मत करते हैं। आज हमारे समाज को भी ऐसे ही नज़रों से देखने की ज़रूरत है। यह एक ऐसी नज़र है जो लोगों को उनके अतीत, उनकी गलतियों या उनके हालत तक सीमित नहीं करती बल्कि मानव गरिमा को पहचानती है उन जगहों पर भी जहां यह मिट गई सी लगती है। यह एक ऐसी नज़र है जो गिरे हुओं को उठने और आगे बढ़ने में मदद करती है जिससे समाज आगे बढ़ता है। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत परम पावन उद्धारक की ओबलेट धर्म बहनों के मिशन के बारे सुन रहे थे जिसको सिस्टर सुसी वेरा ने लिखा है। और अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका घर जमाई। लेखक है विजय पंडित। श्रोताओ, हमारे समाज में आम तौर पर पत्नी को विवाह के बाद पति के घर जाना होता है। इसके विपरीत किसी कारणवश कोई पति अपनी पत्नी के माता पिता के घर में रहता है, यानी ससुराल में रहता है, तो उसे सामाजिक ताने बाने में कई बार अजीब नजरों से देखा जाता है। कई बार घर जमाई को ससुराल में वह मान सम्मान नहीं मिलता जो एक सामान्य पति को अपने घर में मिलता है। लोगों की यह सोच बन जाती है कि वह आर्थिक रूप से परिवार पर निर्भर है। पति पर हमेशा यह साबित करने का दबाव रहता है कि वह घर के सदस्यों के लिए बोझ नहीं है, बल्कि जिम्मेदारियों को समझता है। ज्यों ज्यों दिन गुजरते जाते हैं, उसका मान सम्मान घटता जाता है। अंत में घर के नौकर की तरह उसके साथ व्यवहार किया जाता है। आज की नाटिका में अपने आत्म सम्मान को बचाने के लिए घर जमाई आनंद राज ने क्या किया, आइए सुनते हैं विजय पंडित की लिखी नाटिका घर जमाई।
1: डार्लिंग, सो गए क्या? अरे चलो उठो। अरे जरा मेरे पैर दबा दो।
2: अरे वाह प्रियतमा, किसी पार्टी में डांस तुम करो और तुम्हारे पैर मैं दबाऊं? अरे मैं से दूर रहो, तेरा नींद आ रही है मुझे।
1: ओहो क्यों, आज दबाने में छोटे हो जाओगे? पिछले 10 सालों से मेरे पैर दबा रहे हो। अरे
2: क्या कह रही हो, पैर दबा रहे हैं? मैंने गलती कर दी है? तुम्हारा गला दबाना चाहिए था।
1: अच्छा क्या कहा, जरा फिर से कहना।
2: फिर से क्या कहना, कुछ नहीं अरुंधति, ये जो मन की डकार थी ना वो निकल गई।
1: सुनो जी।
2: क्या जी?
1: एक बात बता देती हूँ।
2: क्या?
1: तुम इस घर में घर जमाई हो, घर जमाई की हैसियत से रहो।
2: अरे मेरी हैसियत है कहाँ, तुम लोगों की हैवानियत है।
1: क्या कहा?
2: कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो।
3: जमाई राजा।
2: हाँ जी।
3: अरे वो जमाई राजा।
2: हाँ जी।
3: बाजार से सब्जी लेकर आए?
2: अरे सासू माँ, मैं सब्जी बाद में ले आऊं तो चलेगा? मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने के लिए आ रहा है।
3: क्यों?
2: क्या
3: जमाई राजा?
2: हाँ जी।
3: तुम कहीं के कलेक्टर हो क्या? जाओ पहले सब्जी लेकर आओ, मेरा रोहन अभी आता ही होगा, उसके लिए अभी तुम्हें खाना भी बनाना है। काम कुछ करते नहीं और मुफ्त की रोटी तोड़ते हैं।
2: अजीब औरत है, यह एटम बम है, दोनों माँ बेटी एक जैसी है। चलो पहले सब्जी लेकर ही आते हैं।
1: सुनो जी।
2: हाँ जी।
1: एक काम करोगे?
2: क्या?
1: आज हम सब सहेलियाँ फिल्म देखने जा रही हैं।
2: अच्छा,
1: तुम हम सबके लिए टिकट ला दो ना।
2: नहीं नहीं, मेरे पास फालतू चीजों के लिए समय नहीं है, अभी तुम्हारी माँ के ये सैंडविच बनाने।
1: तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मना किया?
2: अरे हिम्मत देखी कहाँ है।
1: क्या कहा, फिर से कहना तो।
2: अरे मेरा मतलब था हिम्मत वाला, वो जितेंद्र की फिल्म समझती हो ना। अरे समझती तो कुछ है नहीं, बस लग जाती हो बड़बड़ाने।
1: ए जी।
2: हाँ जी।
1: सुनो ना।
2: क्या?
1: मेरा ये काम कर दो प्लीज।
2: क्या?
3: ए जमाई राजा।
2: हाँ जी।
3: ए जमाई बाबू।
2: अरे हाँ जी।
3: बाबू कहाँ जा रहे हो?
2: अरे कहीं नहीं सासू माँ, अरुंधति को फिल्म दिखाना है ना, तो टिकट लेने जा रहे हैं रावड़ी राठौर के।
3: अच्छा ठीक है ठीक है। और सुनो।
2: क्या?
3: मेरा भी एक काम कर देना।
2: कौन सा?
3: वो सामने एक लॉन्ड्री की दुकान है ना।
2: लॉन्ड्री की?
3: हाँ, वहाँ से मेरी साड़ियाँ ले आना।
2: ठीक है सासू माँ, अब मैं चलूँ, वैसे भी काफी लेट हो गया हूँ।
4: और क्या हाल है आनंद राज, क्या यहाँ तुम फिल्म देखने आओ?
2: अरे काय के राज यार, अब अपनी बीवी के लिए टिकट लेने आए हैं और क्या।
4: यार आनंद राज।
2: हाँ बोल।
4: तू ये शादी करके खुश नहीं लग रहा है, पर तूने तो अपने पसंद की लड़की से शादी की थी, क्यों, क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है क्या?
5: यार विवेक, अब घर जवाई बनने के बाद स्थिति बहुत बेकार हो जाती है यार।
4: हाँ।
5: अब क्या बताएं, नाम है आनंद राज और ना आनंद है और ना राज।
4: अच्छा तो ये बात है, लेकिन मैंने तुझे मना किया था घर जमाई बनने से।
5: हाँ यार विवेक, यार क्या बतावे, अब लालच के चक्कर में है ना, अपनी तो पूरी इज्जत चकना चूर हो गई। अब पछतावा बहुत हो रहा है, क्या करें।
4: देखो आनंद,
5: हाँ
4: मैं दोस्त हूँ तुम्हारा।
5: हाँ।
4: इसलिए समझा रहा हूँ।
5: क्या,
4: अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी जियो यार, मर्द बनो, क्या कर रहे हो तुम, तेरी कोई खुददारी भी है कि नहीं?
5: अरे यार क्या खुददारी, अब तो मैं छोड़ दूं, क्या करूं क्या यार, लेकिन यार समझ में नहीं आ रहा यार। अरुंधति और जो वो है ना, क्या नाम है उसका,
4: फूलन देवी।
5: हाँ हाँ, उसी ने भड़का के रखा है। उन दोनों का इस चक्कर में ना कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या।
4: अरे तो नौकरी कर लो ना भैया कहीं।
5: अरे कहाँ नौकरी कर ले यार, तू तो कह रहा नौकरी कर ले, ऐसी लगती कहीं नौकरी।
4: तुझे आज ही कोई डिसीजन लेना होगा, आखिर यार मैं तेरा दोस्त हूँ, जल्दी से कोई निर्णय ले ले, समझा रहा हूँ तुझे मैं।
5: हाँ यार अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है तो अभी फिर हम चलें क्या?
4: हाँ चलो फिर, ठीक है।
6: पापा आप ये सूटकेस कहाँ लेके जा रहे हो?
5: अरे क्या बताएं बेटा, कहाँ लेके जा रहे हैं बेटा, अब अपने घर जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा।
6: क्यों पापा, फिर मम्मी और मैं आपके बिना कैसे रहेंगे?
5: तो तुम भी चलो मेरे साथ।
6: ठीक है, मैं मम्मी को बुलाता हूँ। मम्मी, ओ मम्मी, मम्मी जल्दी आओ, पापा जा रहे हैं।
7: ये क्या आनंद, तुम कहीं जा रहे हो और तुमने ये सूटकेस क्यों पैक किया है?
5: देखो अरुंधति, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा, सो सुन लो, मेरी इज्जत के जितने कचरे होने थे ना सब हो गए, बस अब बर्दाश्त के बाहर है।
7: अरे
5: हाँ, मैंने एक भूल की है, सासू माँ की बात मान के घर जमाई बना, जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। अरे अब नहीं रहूंगा यार, घर में जा रहा हूँ।
7: देखो आनंद, प्लीज प्लीज मत जाओ।
5: अरे छोड़ मेरा हाथ,
7: हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे आनंद, मत जाओ ना।
5: कैसे रहेंगे, तो तुम भी चलो मेरे साथ, मैंने कब मना किया, पर ये इसके साथ नहीं रहूंगा फूलन के।
7: लेकिन माँ क्या कहेगी, बस यही सोच रही हूँ।
5: बस तुम सोचती ही रहना, तुम्हें मेरी तो कोई फिकर और कदर है नहीं, मैं जा रहा हूँ, समझ गई, तुम सोचो घर में।
7: देखो देखो मत जाओ प्लीज, माँ, ओ माँ जल्दी आओ, देखो देखो ये जा रहे हैं माँ।
3: अरे क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है, और ये जमाई राजा कहाँ जा रहे हैं? तुमको मेरी शर्त याद है कि नहीं जमाई राजा, एक बार इस घर से जाओगे तो मेरी बेटी पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहेगा, समझे?
5: ए सासू माँ, बहुत हो गया, आज मैं सारी जंजीरें तोड़ रहा हूँ, और रही शर्त की बात, तो भार में गई तुम्हारी शर्त।
3: अच्छा
5: शर्त, अनुदिति चल रही है कि नहीं?
3: अरे तुझे जाना है तो तू जा, मेरी बेटी को ऐश और आराम की जिंदगी पसंद है, तू क्या दे पाएगा उसे, आया बड़ा धौस जमाने के लिए।
7: माँ बस करो, बहुत हो गया इनका अपमान, अब मैं भी जा रही हूँ उनके साथ। पत्नी का असली घर पिया का घर होता है, रही ऐश और आराम की बात, तो इनके बिना कैसा ऐश और कैसा आराम। सुनो जी, मैं भी आपके साथ आ रही हूँ।
5: देखो सासू माँ, एक बात ध्यान से सुन ले, आज ही मेरी जिंदगी की सही शुरुआत है, समझ गई है, उसमें जंजीरें हाथ मत डाल, और हमें आशीर्वाद दे।
7: हाँ माँ, हमें अच्छे तरीके से विदा करो और हमें खुशी के साथ जाने दो।
3: ठीक है बेटा, जाओ अपनी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी लो, जाओ बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
0: घर जमाई, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे संदीप दुबे, भवानी कौल, रवीना रावल और विजय पंडित। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि संपूर्ण कलीसिया में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रेरिताई की प्रतिस्थापना हो, ताकि मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव और कलंक को अभिभूत किया जा सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह।

श्रोता और रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत परम पावन उद्धारक की ओबलेट धर्म बहनों के मिशन पर प्रकाश डाल रहे हैं। मेक्सिको सिटी मेक्सिको की राजधानी एवं पश्चिमी गोलार्ध का सबसे बड़ा और धनी आबादी वाला शहर है, जो अपने प्राचीन इतिहास, अनूठी भौगोलिक स्थिति और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। इसके बावजूद इस महानगर में कुछ नकारात्मक चीजें भी हैं, जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जैसे सड़कों पर भेदभाव, गरीबी, अलग थलग किया जाना और व्यवस्थित हिंसा, जो आबादी के एक बड़े हिस्से पर असर डालती है। जहां सड़कों पर कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो विभिन्न परिस्थितियों के कारण वेश्यावृत्ति में पड़ गई हैं। इनमें से हर एक की अपनी मुश्किल कहानियाँ हैं, जैसे हिंसा का शिकार होना, अकेले छोड़ दिया जाना, अवसर की कमी और कम उम्र में ही परिवार से अलग कर दिया जाना। इन महिलाओं की मदद करने के विचार से परम पावन उद्धारक की ओबलेट धर्म बहनें दिन और रात अपने मिशन की जोखिम उठाते हुए सड़कों पर निकलती हैं। उनका काम है साथ चलना, सुनना, साथ देना और अपनी उपस्थिति द्वारा उनकी गरिमा को वापस लाना। उनकी नजरें बीती हुई अतीत पर सवाल या न्याय नहीं करती, बल्कि इंसान और उसकी गरिमा को पहचानती हैं। वेरबुम दे मिशनरी फ्रेटर्निटी की धर्म बहन सिस्टर लुसिया हेरेरियास को इन महिलाओं के साथ ईश्वजन साझा करने में ओबलेट धर्म बहनों के साथ मिलकर काम करने का अवसर मिला। वे बतलाती हैं, जब उन्होंने मुझे परम पावन उद्धारक की ओबलेट धर्म बहनों के साथ मिलकर काम करने के लिए बुलाया, जो वेश्यावृत्ति में पड़ी महिलाओं के साथ काम करती हैं, तो मैं इस अवसर के लिए खुश हो गए, क्योंकि इसके द्वारा मुझे लाचार लोगों को ईश्वर का वचन सुनाने का अवसर मिला। सिस्टर लुसिया का साक्ष्य एक महत्वपूर्ण बात की पुष्टि करता है कि बहुत मुश्किल हालत में भी मनुष्य का दिल ईश्वर के लिए खुला हो सकता है। वे इन महिलाओं के ईश्वरचन के प्रति खुलेपन से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि जिस मुश्किल हालात में वे जी रही हैं, उनके बीच भी ईश्वर की दया और उनका सामीप्य उन्हें मिल सकता है। ओबलेट धर्म बहनें उन जगहों पर महिलाओं के करीब आती हैं जहां वे काम करती हैं और उन्हें रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, मनोवैज्ञानिक मदद और विश्वास प्रशिक्षण प्राप्त करने में मदद करती हैं। वे सभी अपने व्यक्तिगत सफर पर हैं, उनमें से कुछ प्रशिक्षण पूरी कर लेती हैं और जीने के दूसरे तरीके ढूंढ लेती हैं। कुछ लोगों के लिए यह मुश्किल होता है, लेकिन ओबलेट की धर्म बहनों में उन्हें हमेशा स्वागत और मदद की जगह मिलती है, जहां वे एक व्यक्ति के रूप में अपनी गरिमा खोज सकती हैं और अपने फैसले खुद लेती हैं। इस प्रक्रिया में ईश्वर का वचन आशा और आंतरिक स्वास्थ्य का जरिया बन जाता है। सिस्टर लुसिया कहती हैं, मैं यह देखकर प्रभावित और खुश होती हूँ कि कैसे ईश्वर अपने वचन के माध्यम से उनसे बात करते हैं और उन्हें आशा देते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि वे उनसे बहुत प्यार करते हैं। सिस्टर लुसिया एक खास अनुभव बताती हैं जो इस सफर को दिखाता है। एक बार क्रिसमस की तैयारी के लिए एक आध्यात्मिक साधना के दौरान उन्होंने धीरे धीरे एक औरत को ईश्वचन पढ़कर सुनाया जो पढ़ नहीं सकती थी। अंत में उसने उससे पूछा कि बेतलेहम की चरनी के सामने खड़े होकर आपने क्या देखा या महसूस किया, तो उसने बताया कि कुंवारी मरियम को देखा जो यीशु को अपने गोद में ली हुई थी और कह रही थी कि वे मुझसे बहुत प्यार करती हैं। यह अनुभव यीशु की उन बातों की याद दिलाती है जिसमें उन्होंने कहा था कि स्वर्ग के राज्य में वेश्याएं एवं नाकेदार पहले प्रवेश करेंगे। कई लोगों ने बचपन से ही बहुत मुश्किल जीवन जिया है। कुछ मामलों में उनके अपने ही माता पिता या दादा दादी ने उन्हें किशोरावस्था में वेश्य बनने के लिए मजबूर किया। सिस्टर लुसिया भाषा और नजर के महत्व पर बहुत ध्यान देती हैं। वे कहती हैं, मुझे लगता है कि यह बताना जरूरी है कि धर्म बहने उन्हें वेश्या या यौन कर्मी नहीं, बल्कि वेश्यावृत्ति में पड़ी औरतें कहती हैं। वे वेश्या नहीं हैं, बल्कि वे एक ऐसी परिस्थिति में पड़ गई हैं जिससे वे छोड़ नहीं सकती, भले ही रास्ता लंबा और मुश्किल हो। इस सफर में प्रार्थना करने सीखना और यह जानना कि ईश्वर अपने वचन के माध्यम से उनसे बात करते हैं, उन्हें स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ने की ताकत एवं हिम्मत देता है। ओबलेट धर्म बहनों और लुसिया हेरेरियास की मिली जुली कोशिशें इस बात का जीता जागता सबूत है कि एक ऐसी कलीसिया होने का क्या मतलब है जो आगे बढ़ती है, एक ऐसी कलीसिया जो सुरक्षित जगहों का इंतजार नहीं करती, बल्कि इंसान के दायरे में चलने की जोखिम उठाती है।
एक ऐसी कलीसिया जो मानती है कि दया एक ठोस अनुभव है जो इशारों, शब्दों, नजरों में दिखती है, एक नजर जो परिवर्तन ला सकती है। वह भोली नहीं होती, वह असलियत की कठोरता को नहीं नकारती है या दुख को रोमांटिक नहीं बनाती। या एक ऐसी नज़र है जो दर्द को पहचानती है लेकिन उसमें फंसी नहीं रहती। यह एक ऐसी नज़र है जो उन अवसरों को देखती है जहां दूसरे सिर्फ नाकामी देखते हैं। यह यीशु की नज़र है जो सड़कों पर चलते हैं उन लोगों के माध्यम से जो उनकी तरह देखने की हिम्मत करते हैं। आज हमारे समाज को भी ऐसे ही नज़रों से देखने की ज़रूरत है। यह एक ऐसी नज़र है जो लोगों को उनके अतीत, उनकी गलतियों या उनके हालत तक सीमित नहीं करती बल्कि मानव गरिमा को पहचानती है उन जगहों पर भी जहां यह मिट गई सी लगती है। यह एक ऐसी नज़र है जो गिरे हुओं को उठने और आगे बढ़ने में मदद करती है जिससे समाज आगे बढ़ता है। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत परम पावन उद्धारक की ओबलेट धर्म बहनों के मिशन के बारे सुन रहे थे जिसको सिस्टर सुसी वेरा ने लिखा है। और अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका घर जमाई। लेखक है विजय पंडित। श्रोताओ, हमारे समाज में आम तौर पर पत्नी को विवाह के बाद पति के घर जाना होता है। इसके विपरीत किसी कारणवश कोई पति अपनी पत्नी के माता पिता के घर में रहता है, यानी ससुराल में रहता है, तो उसे सामाजिक ताने बाने में कई बार अजीब नजरों से देखा जाता है। कई बार घर जमाई को ससुराल में वह मान सम्मान नहीं मिलता जो एक सामान्य पति को अपने घर में मिलता है। लोगों की यह सोच बन जाती है कि वह आर्थिक रूप से परिवार पर निर्भर है। पति पर हमेशा यह साबित करने का दबाव रहता है कि वह घर के सदस्यों के लिए बोझ नहीं है, बल्कि जिम्मेदारियों को समझता है। ज्यों ज्यों दिन गुजरते जाते हैं, उसका मान सम्मान घटता जाता है। अंत में घर के नौकर की तरह उसके साथ व्यवहार किया जाता है। आज की नाटिका में अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए घर जमाई आनंद राज ने क्या किया, आइए सुनते हैं विजय पंडित की लिखी नाटिका घर जमाई।
1: डार्लिंग, सो गए क्या? अरे चलो उठो। अरे जरा मेरे पैर दबा दो।
2: अरे वाह प्रियतमा, किसी पार्टी में डांस तुम करो और तुम्हारे पैर मैं दबाऊं? अरे मैं से दूर रहो, जरा नींद आ रही है मुझे।
1: ओहो क्यों, आज दबाने में छोटे हो जाओगे? पिछले 10 सालों से मेरे पैर दबा रहे हो। अरे
2: क्या कह रही हो, पैर दबा रहे हैं? मैंने गलती कर दी है? तुम्हारा गला दबाना चाहिए था।
1: अच्छा क्या कहा, जरा फिर से कहना।
2: फिर से क्या कहना, कुछ नहीं अरुंधति, ये जो मन की डकार थी ना वो निकल गई।
1: सुनो जी।
2: क्या जी?
1: एक बात बता देती हूँ।
2: क्या?
1: तुम इस घर में घर जमाई हो, घर जमाई की हैसियत से रहो।
2: अरे मेरी हैसियत है कहाँ, तुम लोगों की हैवानियत है।
1: क्या कहा?
2: कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो।
3: जमाई राजा।
2: हाँ जी।
3: अरे वो जमाई राजा।
2: हाँ जी।
3: बाजार से सब्जी लेकर आए?
2: अरे सासू माँ, मैं सब्जी बाद में ले आऊं तो चलेगा? मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने के लिए आ रहा है।
3: क्यों?
2: क्या
3: जमाई राजा?
2: हाँ जी।
3: तुम कहीं के कलेक्टर हो क्या? जाओ पहले सब्जी लेकर आओ, मेरा रोहन अभी आता ही होगा, उसके लिए अभी तुम्हें खाना भी बनाना है। काम कुछ करते नहीं और मुफ्त की रोटी तोड़ते हैं।
2: अजीब औरत है, यह एटम बम है, दोनों माँ बेटी एक जैसी है। चलो पहले सब्जी लेकर ही आते हैं।
1: सुनो जी।
2: हाँ जी।
1: एक काम करोगे?
2: क्या?
1: आज हम सब सहेलियाँ फिल्म देखने जा रही हैं।
2: अच्छा,
1: तुम हम सबके लिए टिकट ला दो ना।
2: नहीं नहीं, मेरे पास फालतू चीजों के लिए समय नहीं है, अभी तुम्हारी माँ के ये सैंडविच बनाने।
1: तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मना किया?
2: अरे हिम्मत देखी कहाँ है।
1: क्या कहा, फिर से कहना तो।
2: अरे मेरा मतलब था हिम्मत वाला, वो जितेंद्र की फिल्म समझती हो ना। अरे समझती तो कुछ है नहीं, बस लग जाती हो बड़बड़ाने।
1: ए जी।
2: हाँ जी।
1: सुनो ना।
2: क्या?
1: मेरा ये काम कर दो प्लीज।
2: क्या?
3: ए जमाई राजा।
2: हाँ जी।
3: ए जमाई बाबू।
2: अरे हाँ जी।
3: बाबू कहाँ जा रहे हो?
2: अरे कहीं नहीं सासू माँ, अरुंधति को फिल्म दिखाना है ना, तो टिकट लेने जा रहे हैं रावड़ी राठौर के।
3: अच्छा ठीक है ठीक है। और सुनो।
2: क्या?
3: मेरा भी एक काम कर देना।
2: कौन सा?
3: वो सामने एक लॉन्ड्री की दुकान है ना।
2: लॉन्ड्री की?
3: हाँ, वहाँ से मेरी साड़ियाँ ले आना।
2: ठीक है सासू माँ, अब मैं चलूँ, वैसे भी काफी लेट हो गया हूँ।
4: और क्या हाल है आनंद राज, क्या यहाँ तुम फिल्म देखने आओ?
2: अरे काय के राज यार, अब अपनी बीवी के लिए टिकट लेने आए हैं और क्या।
4: यार आनंद राज।
2: हाँ बोल।
4: तू ये शादी करके खुश नहीं लग रहा है? पर तूने तो अपने पसंद की लड़की से शादी की थी, क्यों, क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है क्या?
5: यार विवेक, अब घर जवाई बनने के बाद स्थिति बहुत बेकार हो जाती है यार।
4: हाँ।
5: अब क्या बताएं, नाम है आनंद राज और ना आनंद है और ना राज।
4: अच्छा तो ये बात है, लेकिन मैंने तुझे मना किया था घर जमाई बनने से।
5: हाँ यार विवेक, यार क्या बतावे, अब लालच के चक्कर में है ना, अपनी तो पूरी इज्जत चकना चूर हो गई। अब पछतावा बहुत हो रहा है, क्या करें।
4: देखो आनंद,
5: हाँ
4: मैं दोस्त हूँ तुम्हारा।
5: हाँ।
4: इसलिए समझा रहा हूँ।
5: क्या?
4: अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी जियो यार, मर्द बनो। क्या कर रहे हो तुम, तेरी कोई खुददारी भी है कि नहीं?
5: अरे यार क्या खुददारी, अब तो मैं छोड़ दूं, क्या करूं क्या यार, लेकिन यार समझ में नहीं आ रहा यार। अरुंधति और जो वो है ना, क्या नाम है उसका,
4: फूलन देवी।
5: हाँ हाँ, उसी ने भड़का के रखा है। उन दोनों का इस चक्कर में ना कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या।
4: अरे तो नौकरी कर लो ना भैया कहीं।
5: अरे कहाँ नौकरी कर ले यार, तू तो कह रहा नौकरी कर ले, ऐसी लगती कहीं नौकरी।
4: तुझे आज ही कोई डिसीजन लेना होगा, आखिर यार मैं तेरा दोस्त हूँ, जल्दी से कोई निर्णय ले ले, समझा रहा हूँ तुझे मैं।
5: हाँ यार अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है तो अभी फिर हम चलें क्या?
4: हाँ चलो फिर, ठीक है।
6: पापा आप ये सूटकेस कहाँ लेके जा रहे हो?
5: अरे क्या बताएं बेटा, कहाँ लेके जा रहे हैं बेटा, अब अपने घर जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा।
6: क्यों पापा, फिर मम्मी और मैं आपके बिना कैसे रहेंगे?
5: तो तुम भी चलो मेरे साथ।
6: ठीक है, मैं मम्मी को बुलाता हूँ। मम्मी, ओ मम्मी, मम्मी जल्दी आओ, पापा जा रहे हैं।
7: ये क्या आनंद, तुम कहीं जा रहे हो और तुमने ये सूटकेस क्यों पैक किया है?
5: देखो अरुंधति, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा, सो सुन लो, मेरी इज्जत के जितने कचरे होने थे ना सब हो गए, बस अब बर्दाश्त के बाहर है।
7: अरे
5: हाँ, मैंने एक भूल की है, सासू माँ की बात मान के घर जमाई बना, जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। अरे अब नहीं रहूंगा यार, घर में जा रही हूँ।
7: देखो आनंद, प्लीज प्लीज मत जाओ।
5: अरे छोड़ मेरा हाथ,
7: हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे आनंद, मत जाओ ना।
5: कैसे रहेंगे, तो तुम भी चलो मेरे साथ, मैंने कब मना किया, पर ये इसके साथ नहीं रहूंगा फूलन के।
7: लेकिन माँ क्या कहेगी, बस यही सोच रही हूँ।
5: बस तुम सोचती ही रहना, तुम्हें मेरी तो कोई फिकर और कदर है नहीं, मैं जा रहा हूँ, समझ गई, तुम सोचो घर में।
7: देखो देखो मत जाओ प्लीज, माँ, ओ माँ जल्दी आओ, देखो देखो ये जा रहे हैं माँ।
3: अरे क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है, और ये जमाई राजा कहाँ जा रहे हैं? तुमको मेरी शर्त याद है कि नहीं जमाई राजा, एक बार इस घर से जाओगे तो मेरी बेटी पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहेगा, समझे?
5: ए सासू माँ, बहुत हो गया, आज मैं सारी जंजीरें तोड़ रहा हूँ, और रही शर्त की बात, तो भार में गई तुम्हारी शर्त।
3: अच्छा
5: शर्त, अनुदिति चल रही है कि नहीं?
3: अरे तुझे जाना है तो तू जा, मेरी बेटी को ऐश और आराम की जिंदगी पसंद है, तू क्या दे पाएगा उसे, आया बड़ा धौस जमाने के लिए।
7: माँ बस करो, बहुत हो गया इनका अपमान, अब मैं भी जा रही हूँ उनके साथ। पत्नी का असली घर पिया का घर होता है, रही ऐश और आराम की बात, तो इनके बिना कैसा ऐश और कैसा आराम। सुनो जी, मैं भी आपके साथ आ रही हूँ।
5: देखो सासू माँ, एक बात ध्यान से सुन ले, आज ही मेरी जिंदगी की सही शुरुआत है, समझ गई है, उसमें जंजीरें हाथ मत डाल, और हमें आशीर्वाद दे।
7: हाँ माँ, हमें अच्छे तरीके से विदा करो और हमें खुशी के साथ जाने दो।
3: ठीक है बेटा, जाओ अपनी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी लो, जाओ बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
0: घर जमाई, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे संदीप दुबे, भवानी कौल, रवीना रावल और विजय पंडित। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।

Die Trommeln rufen zu den Waffen. Washingtons

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विंटे।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए और लिम्बुस में उतरे,

0: जीवित और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र काफी कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
2: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: आनंद के पहला भेद। गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
3: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: भार्या, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद के दूसरा भेद। माता मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है,
2: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
2: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
2: मतलब पापियों के मन फिराव के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया।

0: भैया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में पाए जाते हैं,
2: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुमारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारियों की पवित्र कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना।

0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें। हे
1: हे प्रभु
0: प्रभु ईश्वर।
1: ईश्वर।

0: मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन।
1: पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि संपूर्ण कलीसिया में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रेरिताई की प्रतिस्थापना हो, ताकि मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव और कलंक को अभिभूत किया जा सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो 14वें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं फादर संजय दिलीप एक्का।

0: रविवार को देवदूत प्रार्थना के पूर्व अपने संदेश में पोप लियो चौदहवें ने विवाह भोज के दृष्टांत पर चिंतन किया और याद दिलाया कि ख्रिस्त आनंद हमें इससे दूसरों के साथ बांटने के लिए प्रेरित करता है, भले ही गलत फहमियां होने का खतरा हो। वैटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में रविवार 11 अक्टूबर को पोप लियो चौदहवें ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया, जिसके पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Diye bhaiyo em behno, shubh ravivar.
1: Oggi nel Vangelo Gesù parla della festa di nozze preparata da un re per suo figlio.
0: आज के सुसमाचार पाठ में यीशु एक राजा द्वारा अपने बेटे के लिए विवाह भोज की तैयारी करने के बारे बताते हैं। बेटे की शादी किसी भी परिवार के लिए एक खास मौका होता है और ये आनंदित पिता अपनी खुशी सबके साथ बांटना चाहते हैं। वे एक भोज तैयार करते हैं और बहुत से लोगों को निमंत्रण देते हैं। संत थॉमस अक्विनस कहते हैं,
1: Bonum dicitur diffusivum sui,
0: कि अच्छाई स्वतः फैलती है। संत पापा ने कहा, कहानी में दी गई तस्वीर हमारे जीवन के

0: अनुभव के संदर्भ में इस विचार को बताती है। जब कुछ अच्छा होता है तो यह एक ज्योति जलाती है जो हमें अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन दृष्टांत में इतने अच्छे निमंत्रण के बावजूद दावत में आने के बजाय अतिथि नहीं आते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं।
1: Alcuni anzi infastiditi insultano e addirittura uccidono i messaggeri del re.
0: कुछ लोग नाराज होकर राजा के संदेश वाहकों का अपमान करते और उन्हें मार डालते हैं। पोप ने कहा,
1: Anche questo purtroppo succede.
0: दुर्भाग्य से ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है।
1: Non sempre il bene che offriamo è compreso, riconosciuto, apprezzato. Anzi, a volte frainteso e respinto.
0: क्योंकि हम जो अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं उससे हमेशा समझा, पहचाना या सराहा नहीं जाता। सच तो यह है कि कभी कभी जानबूझकर इसका गलत मतलब निकाला जाता है और उससे मना कर दिया जाता है। फिर भी संत पापा ने कहा कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।
1: Il re, davanti al rifiuto, non annulla le nozze e non cancella i festeggiamenti.
0: मना किए जाने पर राजा शादी नहीं टालते या उत्सव रद्द नहीं करते। इसके विपरीत वे और भी अधिक लोगों को निमंत्रित करते हैं, अपने नौकरों को सड़क पर भेजकर उन्हें बुलाते हैं ताकि दुल्हा दुल्हन की खुशी सभी के लिए एक वरदान बन सके। पोप ने चिंतन हेतु प्रेरित करते हुए कहा, हम यहाँ अपने आप से पूछ सकते हैं कि इस कहानी के मुख्य पात्र किसे दर्शाते हैं। संत जेरोम ने राजा को स्वर्गीय पिता, दूल्हे को येसु और दुल्हन को कलीसिया बतलाया है। पोप ने आगे कहा, हम भी मुख्य पात्र हैं जिन्हें प्रभु ने अपने साथ अपना जीवन साझा करने और अपने साथ जीवन के वाहक बनने के लिए चुना है। विवाह भोज हमारी है और विवाह मंडप हमारी कलीसिया एवं घर, वह जगह जहां हम रहते हैं और जहां राजा के बेटे यीशु ख्रिस्त हमारे लिए अपने प्यार का इजहार करते और हमारे हाँ का इंतजार करते हैं। हम उनसे वहां मिलते और बपतिस्मा के श्वेत वस्त्र में दुल्हन की तरह होते हैं और भले कार्यों के गहनों से सजे होते हैं जो हमें ईश्वर एवं एक दूसरे के करीब लाता है। इसलिए हम जिस आनंद की घोषणा करते हैं वह बनावटी नहीं है, यह गहरी, ठोस और असली है। यह खूबसूरत है उन लोगों के चेहरों के समान जिनसे हम मिलते हैं। यह उतना ही असली है जितना हमारे काम, मुस्कान, आंसू, हाथ मिलाना और दयालुता जो हमारे दिन को भर देते हैं। यह दुनिया के उद्धार के लिए ईश्वर का वरदान है। इसलिए संत पापा ने माता मरियम से प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए कहा,
1: Chiediamo dunque a Maria, madre del Signore.
0: आइए हम प्रभु की माँ मरियम से इस खुशी में बढ़ने में हमारी मदद करने के लिए प्रार्थना करें। भले ही यह समझ में ना आए, हम इस खुशी को हमेशा और हर जगह उदारता, साहस एवं विश्वास के साथ बताएं। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
1: Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने सभी विश्वासियों का अभिवादन किया एवं दुनिया भर की महत्वपूर्ण घटनाओं को याद किया।
1: Ieri a Mantova è stata beatificata Suor Maria Ignazia Isacchi.
0: सबसे पहले संत पापा ने सिस्टर मरिया इग्नासिया इसाकी की धन्य घोषणा को याद किया जो शनिवार को संपन्न हुए, जिसकी जानकारी देते हुए पोप ने कहा, कल मंतुआ में सिस्टर मरिया इग्नासिया इसाकी की धन्य घोषणा की गई जो येसु के पौत्र हृदय के उर्सुलाइन धम बहनों के धमसम की संस्थापिका हैं। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआती दशकों के बीच उन्होंने जरूरतमंदों और वंचित लोगों की साहसपूर्वक मदद की। उनका आदर्श हम सभी में पुनः एक बार दुनिया में सबके लिए सुसमाचार के प्रेम के साक्षी बनने की इच्छा जागृत करे। इसके बाद यूक्रेन की याद करते हुए संत पापा ने कहा,
1: Nella martoriata Ucraina.
0: परेशान यूक्रेन में युद्ध के कारण उसकी सीमाओं से बहुत दूर, खासकर सबसे गरीब देशों में लोगों को तकलीफ हो रही है, जहां बहुत से लोग अनाज के आयात पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा, मैं युद्ध में शामिल पार्टियों से हार्दिक अपील करता हूं कि वे काला सागर के माध्यम से अनाज के सुरक्षित आवागमन की इजाजत दें। लाखों लोगों की रोजी रोटी को युद्ध बंधक नहीं बना सकता। तत्पश्चात कार्यस्थल पर होने वाले हादसों के शिकार लोगों की याद कर उन्होंने कहा, आज इटली में कार्यस्थल पर होने वाले हादसों के शिकार लोगों का दिन है। मैं काम से जुड़ी चोटों और विकलांग लोगों से जुड़े राष्ट्रीय मजदूर संघ का अभिवादन करता हूं और रोकथाम की कोशिशों को बढ़ावा देता हूं। पोप ने इस अवसर पर संत पेतरस महागिरजाघर के प्रांगण में उपस्थित अथवा संचार माध्यमों से उन्हें सुन रहे सभी विश्वासों का अभिवादन किया, विशेषकर रोम वासियों एवं विश्वभर से तीर्थयात्रा में एकत्रित विश्वासियों को, और अंत में सभी का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए एक महत्वपूर्ण जानकारी दी।
1: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone.
0: प्यारे मित्रों, हाल ही में कुछ मेडिकल जांच के दौरान डॉक्टरों को मेरे फेफड़े में एक छोटी गांठ मिली है। यह शुरुआती चरण में है। चिकित्सकों ने अपने सुझाव में मुझे इसकी सर्जरी की सलाह दी है। अतः उनके सुझाव अनुसार मैंने आने वाले दिनों में इसकी सर्जरी का निर्णय लिया है। मैं आपके आध्यात्मिक सामीप्य के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी प्रार्थनाओं पर भरोसा करता हूँ। धन्यवाद। शुभ रविवार।
1: Grazie, buona domenica!

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापलियो चौदवे ने रविवार ये देवदूत प्रार्थना के उपरांत अपने स्वास्थ्य संबंधी बातों का खुलासा किया कि उन्हें फेफड़े में हुई एक छोटी गांठ के संबंध में सर्जरी कराना होगा। संत पापा ने कहा, चिकित्सकों ने मेरे फेफड़े में एक छोटा गांठ पाया है, यह शुरुआती चरण है। उन्होंने मुझे इसकी सर्जरी हेतु सुझाव दी है, अतः उनके सुझाव अनुसार मैंने आने वाले दिनों में इसकी सर्जरी का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा, सर्जरी के दिन निर्धारित किए जा चुके हैं। आध्यात्मिक सामीप्य के लिए आप सबों का धन्यवाद अदा करता हूं और अपने को आप सबों की प्रार्थनाओं में सुपुर्द करता हूं। संत पापा कल 13 अक्टूबर को जिमिल्ली अस्पताल में दाखिला होंगे। अपने स्वास्थ्य की घोषणा के उपरांत उधर इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तेरेल्ला ने संत पापा को प्रेषित अपने संदेश में कहा, इटली के लोग आपके बहुत करीब हैं और आपको अपना स्नेह प्रकट करते हैं। मैं अपनी ओर से परम धर्माध्यक्ष के लिए हृदय से दुआ करता हूं, आपको जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले और आप जल्दी तथा पूर्ण रूपेण ठीक हो जाएं। वहीं रोम धर्म प्रांत के विकर ने संत पापा के सेहत के संबंध में अपने निकटता के भाव अर्पित करते हुए उन्हें रोम की संरक्षिका कुंवारी मरियम सालुस पोपोली रोमानी के हाथों में सुपुर्द करते हुए अपनी प्रार्थनाओं का सामीप्य प्रकट किया। संत पापलियो चौदवी ने सोमवार 12 अक्टूबर को चिरकोलो दी सन पेत्रो रोम के एक चैरिटी संघ के सदस्यों से मुलाकात की जो परम धर्म पीठ के दान पुण्य कार्यों में मदद करती है। संत पापा ने उन्हें अपने दिए गए संदेश में कहा, करुणा के आपके कार्य प्रार्थना के स्रोत, आत्मा के कार्य और आपकी आध्यात्मिक त्याग की अभिव्यक्ति बने। संत पापा ने संघ के कामों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि वे कलिस के खूबसूरत चेहरे को बनाने में मदद करते हैं जो गरीब और सबसे कमजोर लोगों के बीच सुसमाचार का साक्ष्य बनता है। रोम के इस संघ की स्थापना 1869 में की गई थी जो सूप किचन संचालन करते हुए आतिथ्य स्थलों और केंद्रों का संचालन करती और जरूरतमंद लोगों को मदद पहुंचाती है। संघ के आदर्श वाक्य प्रार्थना काम और त्याग से प्रेरणा लेते हुए संत पापा ने करुणा शब्द पर चिंतन किया जो अन्य तीन बातों को अपने में समाहित करती है। संत पापा ने प्रार्थना की महत्ता पर ध्यान आकर्षित कराया जो करुणा के कार्यों की आधारशिला है। उन्होंने कहा, प्रार्थना वह संबंध है जिसके द्वारा करुणा के कार्य अपने को दूसरों के लिए देने हेतु हम प्रेरित होते हैं। उन्होंने कार्य के संबंध में कहा कि यह हमें ईश्वर के प्रेम को साझा करने में मदद करता है जिसके द्वारा हम अपने जीवन और सेवा के कार्य हेतु समर्पित होते हैं। प्रार्थना हमारे लिए प्रभावकारी तब होता है जब हम इसके द्वारा अपने पड़ोसियों की ओर अभिमुख होते हैं। त्याग के संबंध में संत पापा ने कहा कि यह करुणा का हृदय है जो हमें अपने जीवन में प्रार्थना और कार्य के बीच संतुलन स्थापित करने में मदद करता है। अपने संदेश के अंत में संत पापा लियो ने चिरकोलो दी सन पेत्रो के प्रति अपनी कृतज्ञता के भाव प्रकट किए जो उनकी प्रेरिताई हेतु रोम के विभिन्न धर्म प्रांतों से दान संग्रहित करते हैं। पेत्रुस का पेंस रोम के धर्माध्यक्ष को रोम शहर की देखरेख करने के साथ साथ परम धर्म पीठ को पूरी कलिस की जरूरतों में सहायता देने हेतु मदद करता है। संत पापलियो चौदवे ने कार्डिनल मंडल के अध्यक्ष सेवानिवृत्त कार्डिनल जोवानी रे बप्तिस्ता के प्रति कृतज्ञता के भाव प्रकट किए। संत पापा ने कार्डिनल जोवानी रे के त्याग पत्र उपरांत सोमवार को उन्हें एक पत्र प्रेषित किया और 6 वर्षों से अधिक परम धर्म पीठ की निष्ठामय सेवा हेतु उन्हें धन्यवाद कहा। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे कार्डिनल मंडल के अध्यक्ष स्वरूप कार्डिनल रे की भूमिका कलिसिया और संत पापा मेरे लिए और सबों के लिए प्रेरणा का एक शिक्षा प्रद साक्ष्य रहा। संत पापा ने इस बात पर जोर दिया कि रोमन कोरिया में कार्डिनल रे के कई और संवेदनशील पदों ने उन्हें परम धर्माध्यक्ष खासकर संत पापा जॉन पॉल द्वितीय का भरोसामंद सहयोगी बना दिया।
1979 में पोलिश संत पापा ने कार्डिनल रे को वैटिकन राज्य का आलंकनकर्ता नियुक्त किया। 8 साल बाद उन्होंने पर्म धर्मपीठ धर्माधर्शकों की धर्म सभा का उन्हें सचिव नियुक्त किया और वेस्कोवियो का महाधर्माध्यक्ष नियुक्त किया। सन 1979 में कार्डिनल रे वैटिकन राज्य के स्थानपन अधिकारी का पद ग्रहण किया, जिसे उन्होंने 11 सालों तक बाखूबी संभाला। संत पापा लियो ने कहा कि कार्डिनल का सेवा में मजबूत विश्वास और लगनता को हम उनके परिवार से मिले मेहनती स्वभाव से जुड़ा हुआ पाते हैं। उन्होंने कहा कि उनका धर्माध्यक्षीय आदर्श वाक्य ऊपर से शक्ति इस बात का साक्ष्य है कि वे हमेशा से जानते हैं कि प्रभु और उनकी कृपा से शक्ति कैसे मांगनी और लेनी है। कार्डिनल रे ने पर्म धर्मपीठ की सेवा अपने जीवन के कम उम्र में ही शुरू की। वे पनामा और ईरान में प्रेरिताई हेतु राजनीतिक सेवाएं दी और महाधर्माध्यक्ष जोवान्नी बेनेल्ली के व्यक्तिगत सचिव के तौर पर भी कार्य किए। उधर वैटिकन में चल रही आमोरिस लेतित्से की बैठक के चौथे दिन कार्डिनल होसे कैनो ने विवाह के संबंध में निरंतर प्रेरितिक सहचर्य पर बल दिया, जबकि ईश शास्त्रीय मरियम मार्सेल्ला मज़िनी ने कहा कि विवाह संस्कार को सिर्फ मनाया ही नहीं बल्कि उसे जीवन में आत्मसात करने की भी आवश्यकता है। कार्डिनल होसे ने कहा, कलीसिया के पुरोहितों को चाहिए कि वे युवा विवाहितों के अनुभवों को ध्यान से सुने। वे ख्रिस्तीय समुदाय से क्या उम्मीद करते हैं और वे अपनी प्रेरितिक जिम्मेदारी को कैसे संभालते हैं। वहीं मंजिनी ने कहा, आमोरिस लेतित्से में पति पत्नी का एक दूसरे को कहा गया हाँ अपनी परिपूर्णता नहीं है बल्कि यह एक सफर की शुरुआत है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि संपूर्ण कलीसिया में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रेरिताई की प्रतिस्थापना हो, ताकि मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव और कलंक को अभिभूत किया जा सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो 14वें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं फादर संजय दिलीप

0: रविवार को देवदूत प्रार्थना के पूर्व अपने संदेश में पोप लियो चौदहवें ने विवाह भोज के दृष्टांत पर चिंतन किया और याद दिलाया कि ख्रिस्ते आनंद हमें इससे दूसरों के साथ बांटने के लिए प्रेरित करता है, भले ही गलत फहमियां होने का खतरा हो। वैटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में रविवार 11 अक्टूबर को पोप लियो चौदहवें ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया, जिसके पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार।
1: Oggi nel Vangelo Gesù parla della festa di nozze preparata da un re per suo figlio.
0: आज के सुसमाचार पाठ में यीशु एक राजा द्वारा अपने बेटे के लिए विवाह भोज की तैयारी करने के बारे बताते हैं। बेटे की शादी किसी भी परिवार के लिए एक खास मौका होता है और ये आनंदित पिता अपनी खुशी सबके साथ बांटना चाहते हैं। वे एक भोज तैयार करते हैं और बहुत से लोगों को निमंत्रण देते हैं। संत थॉमस अक्विनस कहते हैं,
1: Bonum dicitur diffusivum sui,
0: कि अच्छाई स्वतः फैलती है। संत पापा ने कहा, कहानी में दी गई तस्वीर हमारे जीवन के अनुभव के संदर्भ में इस विचार को बताती है। जब कुछ अच्छा होता है तो यह एक ज्योति जलाती है जो हमें अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन दृष्टांत में इतने अच्छे निमंत्रण के बावजूद दावत में आने के बजाय अतिथि नहीं आते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं।
1: Alcuni anzi infastiditi insultano e addirittura uccidono i messaggeri del re.
0: कुछ लोग नाराज होकर राजा के संदेशवाहकों का अपमान करते और उन्हें मार डालते हैं। पोप ने कहा,
1: Anche questo purtroppo succede.
0: दुर्भाग्य से ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है।
1: Non sempre il bene che offriamo è compreso, riconosciuto, apprezzato, anzi a volte frainteso e respinto.
0: क्योंकि हम जो अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं उससे हमेशा समझा, पहचाना या सराहा नहीं जाता। सच तो यह है कि कभी कभी जानबूझकर इसका गलत मतलब निकाला जाता है और उससे मना कर दिया जाता है। फिर भी संत पापा ने कहा कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।
1: Il re, davanti al rifiuto, non annulla le nozze e non cancella i festeggiamenti.
0: मना किए जाने पर राजा शादी नहीं टालते या उत्सव रद्द नहीं करते, इसके विपरीत वे और भी अधिक लोगों को निमंत्रित करते हैं। अपने नौकरों को सड़क पर भेजकर उन्हें बुलाते हैं ताकि दुल्हा दुल्हन की खुशी सभी के लिए एक वरदान बन सके। पोप ने चिंतन हेतु प्रेरित करते हुए कहा, हम यहाँ अपने आप से पूछ सकते हैं कि इस कहानी के मुख्य पात्र किसे दर्शाते हैं। संत जेरोम ने राजा को स्वर्गीय पिता, दुल्हे को येसु और दुल्हन को कलीसिया बतलाया है। पोप ने आगे कहा, हम भी मुख्य पात्र हैं जिन्हें प्रभु ने अपने साथ अपना जीवन साझा करने और अपने साथ जीवन के वाहक बनने के लिए चुना है। विवाह भोज हमारी है और विवाह मंडप हमारी कलीसिया एवं घर, वह जगह जहां हम रहते हैं और जहां राजा के बेटे यीशु ख्रिस्त हमारे लिए अपने प्यार का इजहार करते और हमारे हाँ का इंतजार करते हैं। हम उनसे वहां मिलते और बपतिस्मा के श्वेत वस्त्र में दुल्हन की तरह होते हैं और भले कार्यों के गहनों से सजे होते हैं जो हमें ईश्वर एवं एक दूसरे के करीब लाता है। इसलिए हम जिस आनंद की घोषणा करते हैं वह बनावटी नहीं है, यह गहरी, ठोस और असली है। यह खूबसूरत है उन लोगों के चेहरों के समान जिनसे हम मिलते हैं। यह उतना ही असली है जितना हमारे काम, मुस्कान, आंसू, हाथ मिलाना और दयालुता जो हमारे दिन को भर देते हैं। यह दुनिया के उद्धार के लिए ईश्वर का वरदान है। इसलिए संत पापा ने माता मरियम से प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए कहा,
1: Chiediamo dunque a Maria, madre del Signore.
0: आइए हम प्रभु की माँ मरियम से इस खुशी में बढ़ने में हमारी मदद करने के लिए प्रार्थना करें। भले ही यह समझ में ना आए, हम इस खुशी को हमेशा और हर जगह उदारता, साहस एवं विश्वास के साथ बताएं। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
1: Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने सभी विश्वासियों का अभिवादन किया एवं दुनिया भर की महत्वपूर्ण घटनाओं को याद किया।
1: Ieri a Mantova è stata beatificata Sor Maria Ignazia Isacchi.
0: सबसे पहले संत पापा ने सिस्टर मरिया इग्नासिया इसाकी की धन्य घोषणा को याद किया जो शनिवार को संपन्न हुए, जिसकी जानकारी देते हुए पोप ने कहा, कल मंतुआ में सिस्टर मरिया इग्नासिया इसाकी की धन्य घोषणा की गई, जो येसु के पौत्र हृदय के उर्सुलाइन धम बहनों के धमसम की संस्थापिका हैं। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआती दशकों के बीच उन्होंने जरूरतमंदों और वंचित लोगों की साहसपूर्वक मदद की। उनका आदर्श हम सभी में पुनः एक बार दुनिया में सबके लिए सुसमाचार के प्रेम के साक्षी बनने की इच्छा जागृत करे। इसके बाद यूक्रेन की याद करते हुए संत पापा ने कहा, परेशान यूक्रेन में युद्ध के कारण उसकी सीमाओं से बहुत दूर, खासकर सबसे गरीब देशों में लोगों को तकलीफ हो रही है, जहां बहुत से लोग अनाज के आयात पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा, मैं युद्ध में शामिल पार्टियों से हार्दिक अपील करता हूं कि वे काला सागर के माध्यम से अनाज के सुरक्षित आवागमन की इजाजत दें। लाखों लोगों की रोजी रोटी को युद्ध बंधक नहीं बना सकता। तत्पश्चात कार्यस्थल पर होने वाले हादसों के शिकार लोगों की याद कर उन्होंने कहा, आज इटली में कार्यस्थल पर होने वाले हादसों के शिकार लोगों का दिन है। मैं काम से जुड़ी चोटों और विकलांग लोगों से जुड़े राष्ट्रीय मजदूर संघ का अभिवादन करता हूं और रोकथाम की कोशिशों को बढ़ावा देता हूं। पोप ने इस अवसर पर संत पेत्रस महागिरजाघर के प्रांगण में उपस्थित अथवा संचार माध्यमों से उन्हें सुन रहे सभी विश्वासियों का अभिवादन किया, विशेषकर रोम वासियों एवं विश्वभर से तीर्थयात्रा में एकत्रित विश्वासियों को, और अंत में सभी का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए एक महत्वपूर्ण जानकारी दी।
1: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone.
0: प्यारे मित्रों, हाल ही में कुछ मेडिकल जांच के दौरान डॉक्टरों को मेरे फेफड़े में एक छोटी गांठ मिली है, यह शुरुआती चरण में है। चिकित्सकों ने अपने सुझाव में मुझे इसकी सर्जरी की सलाह दी है, अतः उनके सुझाव अनुसार मैंने आने वाले दिनों में इसकी सर्जरी का निर्णय लिया है। मैं आपके आध्यात्मिक सामीप्य के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी प्रार्थनाओं पर भरोसा करता हूँ। धन्यवाद। शुभ रविवार।
1: Grazie, buona domenica!

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापलियो 14वें ने रविवार ये देवदूत प्रार्थना के उपरांत अपने स्वास्थ्य संबंधी बातों का खुलासा किया कि उन्हें फेफड़े में हुई एक छोटी गांठ के संबंध में सर्जरी कराना होगा। संत पापा ने कहा, चिकित्सकों ने मेरे फेफड़े में एक छोटा गांठ पाया है, यह शुरुआती चरण है। उन्होंने मुझे इसकी सर्जरी हेतु सुझाव दी है, अतः उनके सुझाव अनुसार मैंने आने वाले दिनों में इसकी सर्जरी का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा, सर्जरी के दिन निर्धारित किए जा चुके हैं। आध्यात्मिक सामिप्य के लिए आप सबों का धन्यवाद अदा करता हूं और अपने को आप सबों की प्रार्थनाओं में सुपुर्द करता हूं। संत पापा कल 13 अक्टूबर को जमिल्ली अस्पताल में दाखिला होंगे। अपने स्वास्थ्य की घोषणा के उपरांत उधर इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तेरेल्ला ने संत पापा को प्रेषित अपने संदेश में कहा, इटली के लोग आपके बहुत करीब हैं और आपको अपना स्नेह प्रकट करते हैं। मैं अपनी ओर से परम धर्माध्यक्ष के लिए हृदय से दुआ करता हूं, आपको जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले और आप जल्दी तथा पूर्ण रूपेण ठीक हो जाए। वही रोम धर्म प्रांत के विकर ने संत पापा के सेहत के संबंध में अपने निकटता के भाव अर्पित करते हुए उन्हें रोम की संरक्षिका कुमारी मरियम सालुस पोपोली रोमानी के हाथों में सुपुर्द करते हुए अपनी प्रार्थनाओं का सामिप्य प्रकट किया। संत पापलियो 14वें ने सोमवार 12 अक्टूबर को चिरकोलो दी सन पेत्रो रोम के एक चैरिटी संघ के सदस्यों से मुलाकात की, जो परम धर्म पीठ के दान पुण्य कार्यों में मदद करती है। संत पापा ने उन्हें अपने दिए गए संदेश में कहा, करुणा के आपके कार्य प्रार्थना के स्रोत, आत्मा के कार्य और आपकी आध्यात्मिक त्याग की अभिव्यक्ति बने। संत पापा ने संघ के कामों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि वे कलिसिया के खूबसूरत चेहरे को बनाने में मदद करते हैं, जो गरीब और सबसे कमजोर लोगों के बीच सुसमाचार का साक्ष्य बनता है। रोम के इस संघ की स्थापना 1869 में की गई थी, जो सूप किचन संचालन करते हुए आतिथ्य स्थलों और केंद्रों का संचालन करती और जरूरतमंद लोगों को मदद पहुंचाती है। संघ के आदर्श वाक्य प्रार्थना, काम और त्याग से प्रेरणा लेते हुए संत पापा ने करुणा शब्द पर चिंतन किया, जो अन्य तीन बातों को अपने में समाहित करती है। संत पापा ने प्रार्थना की महत्ता पर ध्यान आकर्षित कराया, जो करुणा के कार्यों की आधारशिला है। उन्होंने कहा, प्रार्थना वह संबंध है जिसके द्वारा करुणा के कार्य अपने को दूसरों के लिए देने हेतु हम प्रेरित होते हैं। उन्होंने कार्य के संबंध में कहा कि यह हमें ईश्वर के प्रेम को साझा करने में मदद करता है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन और सेवा के कार्य हेतु समर्पित होते हैं। प्रार्थना हमारे लिए प्रभावकारी तब होता है जब हम इसके द्वारा अपने पड़ोसियों की ओर अभिमुख होते हैं। त्याग के संबंध में संत पापा ने कहा कि यह करुणा का हृदय है, जो हमें अपने जीवन में प्रार्थना और कार्य के बीच संतुलन स्थापित करने में मदद करता है। अपने संदेश के अंत में संत पापा लियो ने चिरकोलो दी सन पेत्रो के प्रति अपनी कृतज्ञता के भाव प्रकट किए, जो उनकी प्रेरिताई हेतु रोम के विभिन्न धर्म प्रांतों से दान संग्रहित करते हैं। पेत्रुस का पेंस रोम के धर्माध्यक्ष को रोम शहर की देखरेख करने के साथ साथ परम धर्म पीठ को पूरी कलिसिया की जरूरतों में सहायता देने हेतु मदद करता है। संत पापलियो 14वें ने कार्डिनल मंडल के अध्यक्ष सेवानिवृत्त कार्डिनल जोवानी रे बप्तिस्ता के प्रति कृतज्ञता के भाव प्रकट किए। संत पापा ने कार्डिनल जोवानी रे के त्याग पत्र उपरांत सोमवार को उन्हें एक पत्र प्रेषित किया और 6 वर्षों से अधिक परम धर्म पीठ की निष्ठामय सेवा हेतु उन्हें धन्यवाद कहा। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे कार्डिनल मंडल के अध्यक्ष स्वरूप कार्डिनल रे की भूमिका कलिसिया और संत पापा मेरे लिए और सबों के लिए प्रेरणा का एक शिक्षाप्रद साक्ष्य रहा। संत पापा ने इस बात पर जोर दिया कि रोमन कुरिया में कार्डिनल रे के कई और संवेदनशील पदों ने उन्हें परम धर्माध्यक्ष खासकर संत पापा जॉन पॉल द्वितीय का भरोसामंद सहयोगी बना दिया। 1979 में पोलिश
संत पापा ने कार्डिनल रे को वैटिकन राज्य का आलंकनकर्ता नियुक्त किया। 8 साल बाद उन्होंने पर्म धर्म पीठ धर्माधर्शकों की धर्म सभा का उन्हें सचिव नियुक्त किया और वेस्कोवियो का महाधर्माध्यक्ष नियुक्त किया। सन 1979 में कार्डिनल रे वैटिकन राज्य के स्थानपन अधिकारी का पद ग्रहण किया, जिसे उन्होंने 11 सालों तक बाखूबी संभाला। संत पापा लियो ने कहा कि कार्डिनल का सेवा में मजबूत विश्वास और लगनता को हम उनके परिवार से मिले मेहनती स्वभाव से जुड़ा हुआ पाते हैं। उन्होंने कहा कि उनका धर्माध्यक्षीय आदर्श वाक्य ऊपर से शक्ति इस बात का साक्ष्य है कि वे हमेशा से जानते हैं कि प्रभु और उनकी कृपा से शक्ति कैसे मांगनी और लेनी है। कार्डिनल रे ने पर्म धर्म पीठ की सेवा अपने जीवन के कम उम्र में ही शुरू की। वे पनामा और ईरान में प्रेरिताई हेतु राजनीतिक सेवाएं दी और महाधर्माध्यक्ष जोवान्नी बेनेल्ली के व्यक्तिगत सचिव के तौर पर भी कार्य किए। उधर वैटिकन में चल रही आमोरिस लेतित्से की बैठक के चौथे दिन कार्डिनल होसे कैनो ने विवाह के संबंध में निरंतर प्रेरितिक सहचर्य पर बल दिया, जबकि ईश शास्त्रीय मरियम मार्सेल्ला मज़िनी ने कहा कि विवाह संस्कार को सिर्फ मनाया ही नहीं बल्कि उसे जीवन में आत्मसात करने की भी आवश्यकता है। कार्डिनल होसे ने कहा, कलिस्से के पुरोहितों को चाहिए कि वे युवा विवाहितों के अनुभवों को ध्यान से सुने। वे ख्रिस्तीय समुदाय से क्या उम्मीद करते हैं और वे अपनी प्रेरितिक जिम्मेदारी को कैसे संभालते हैं। वहीं मंजिनी ने कहा, आमोरिस लेतित्से में पति पत्नी का एक दूसरे को कहा गया हाँ अपनी परिपूर्णता नहीं है बल्कि यह एक सफर की शुरुआत है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।